0: सुवारी है, का सुवारी है, का सुवारी है।
1: पौड़िया पे ही करना की कला पे ही ते धारिये, देखे की ता अपना धर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जीव प्राण है क्यों साहे मन विसारी है। अपना हथी अपना पे ही का सवारी है, आपे ही का सवारी है।
0: जिन्ना पेटे आ

थोड़ी नानक अंतना जा अपनी हरता के पर आवार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां तुरी चढ़े विसी आर आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिनकी यार फिर तिसे करनी सार फिर

0: जी आया अंदर जी सब की जान ला सब किस तेरा वास तेरा कर भला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर माण महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास तुझे अगै बिनवता श्लोक
1: पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महात दिवस राज दो दाई दाया के लै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म दूर ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमित ओज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिज तेर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्ब नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद बरांच बचार रहे हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जन माहे धरी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जन माहे धरी इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर

एहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल

अवर जंजाल तेरा काहू न काम जियो। जीवन देवा पार ब्रह्म सेवन एहो उपदेश मोको गुर दीना जियो। तेस स्यों न लाये हीत जाको किश नाही बीत। अंत की बार ओह संग न चले। मन तन तू आराद हर के प्रीतम साद। जाके संग तेरे बंधन छूटे। गोह पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस काश पटल न कीजे। सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तप सोई। नानक जाको कृपा कीजे। गोह पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस काश पटल न कीजे। सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तप सोई।

मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रंग परंग अनेक ना जापन करते बा जिया अंदर जियो सबके जान ला सब तेरा।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे ओ। सब तो है बखान।

राम कले महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आइया, सबदू ता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया। कहे नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तितकार सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया। पंचदूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन काओ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित का।

मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक।

सुन यार हमारे सज्जन, एक करां बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे, हाँ फिराओं को जंतिया तिस दस प्यारे, सिर तरी उतारे एक पोरी दर्शन दीजै, नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे, एक तिल पीना तीरी जै, प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना, चात्रिक जिवै तिसंतिया, जन नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा बुझंतिया, तेंडी बंदस मैं कोई ना डिठा, तू नानक मन पाना, कोल कुमाई तिस मित्र विचोले, जै मेल कंत पछाणा, तुमरी शरण तुमारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले, राख हो राखन हार दयाला, नानक करके गोले, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राख हो सरनाई, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दे नूर अरसहु कुरसहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा माल, जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहु, सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु, जिस पास बैठिया सोहिया सवना दा वेसाहु। सत नाम श्री वाहिगुरु

नाद कवेत साध सभा में आनंद विश्राम ओन संग सो पाए जिस मस्तक कराम दोए कर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवा संता तूर दोए कर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवा संता तूर वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी के फतेह।

0: सब किश तेरे वास तेरा कर भला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता नानक दसन दास तुदा गै बिनवता
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी।

अमृत शॉड भिखै भिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखहु शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखहु शरणाई सुकहु टल गुर सेवियै अहनिस सहज सोभाए दर्शन परस आए गुरु कै

खाटण का हर हर रोजगार संचण का हर एको नाम हलत पलत ताक आवे काम नाम रते प्रभ रंग अपार।

सुख संतन कै बिन सी चंद, जह साध संतन हो वह एकत्र, तह हर जस गावह नाद कवित, साध सभा मह आनंद विश्राम, उन संग सो पाए जिस मस्तक कराम, दोए कर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहाँ गुणतास, प्रभ दयाल कृपाल हजूर, नानक जीव संता तोर, दोए कर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहाँ गुणतास, प्रभ दयाल कृपाल हजूर,

किया सकल जहान सेवक सेव है कर्म चढ़ाओ भिनी रंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक।

तिनके दुख कोटिक दूर गए। मथुरा जिन अमृत नाम पियो, ए पद्धत ते मत चुके रे मन, भेद विभेद न जान बियो। पर तच हृदय गुर अर्जन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। पर तच हृदय गुर अर्जन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।

सुख सोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निह चल कर बाधियो गोर कियो बंधानी। प्रगटियो जोत सहज सुख सोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निह चल कर बाधियो गोर कियो बंधानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पांजवा जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तो विद नीकी खटा।